फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना.

0: इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है शादी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से।
1: जिस दर पे सभी एक है।
0: सुनने वालों आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा टीम के तरफ से। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। यहाँ से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम, पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

रेडियो SBS की जरिए पेश की गई सुबह सुबह लो शिव का नाम हरि हरन के आवास में सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अगला भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज जबकि शनिवार का दिन है तो ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में पेश किया

आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना भजन यात्रा प्रोग्राम में। हम आपको ले चलते हैं आपके बाहर महेंद्र कपूर की आवाज में एक सुंदर सा भजन जो

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में महेंद्र कपूर की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11। पंडित जयशंकर जी की आवाज में चले मिलकर ये सुंदर भजन को सुनते हैं।

भजन बस पर वांबे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये सुंदर भजन की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और वो भी प्रसून मुखर्जी की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए प्रसूत मुखर्जी की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए विपिन सचदेवा की आवाज में ये सुंदर सा भजन पेश की गई है। चले प्रोग्राम में सुरेश वत्कर की आवाज में श्री हनुमान चालीसा पेश किया जा रहा है।
1: निज मन मुकुर सुधार

0: सुंदर सा श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुनने वालों चले यहां से प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर और सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।
1: आर्त व्यक्ति ही भगवान की शरण में जाते हैं, आर्त की पुकार ही आरती है। आरती अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए की जाती है। पूजा में भूल से या प्रमादवश कोई त्रुटि रह जाती है तो आरती करने से उसकी पूर्ति हो जाती है। 1, 5, 7 आदि विषम संख्या के दीप जलाकर आरती करनी चाहिए। इष्ट देव की प्रतिमा के चरणों में 4 बार, नाभि पर 2 बार, मुख पर 1 बार और नीचे से ऊपर तक 7 बार आरती घुमानी चाहिए।

0: रेडियो SBS की जरिए अति सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, यहाँ तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। आसरा उम्मीद है आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। हमारी सभी सुनने वालों, सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS.
2: Gaat er iemand in de familie trouwen? Is er iemand jarig? Of wil je iemand verrassen? Radio SBS is de goedkoopste voor al je verblijf. €5 per verblijf. €5 per verblijf met gratis download link na de verwijs. Dit kan alleen bij Radio SBS, nergens anders. Bel voor informatie op 030-265-6560. Je kan ook een mail of app sturen via radiosbs.nl.
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
3: Opruiming bij Vijay Sariman in Den Haag. 50-60% korting. Saris vanaf €10. Mardi, kamkaj, ja namaz ke liye. Safed salwar €30. Rauw kurtis €10. Churidar salwar aur anarkali salwar vanaf €35. Dulha ki sherwani, dulha ki

रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। 9:00 प्रोग्राम में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है। 5 मिनट ओवर नेक स्टूडियो व्यतीत हो चुका है। शनिवार का दिन 23 तारीख मई का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। शनिचर का दिन मतलब होते हैं लंबी वीकेंड, पिंगस्टर वीकेंड। सोमवार, आने वाले सोमवार भी छुट्टी का दिन है, ट्वेड पिंगस्टर दाखिल, तो लंबी वीकेंड है। सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड, शुभ शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना। मौसम भी काफी हसीन, खूबसूरत सुहाना मौसम।

Kapata, Teemstreef 237. Studio Geora, Anna Heto, Ani se pehle zarur aap ek aspraak banaiye. Taki hum aapko achhi tarika se seva kar sake, garma garam coffee chai ke saath. पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम हर सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है प्रोग्राम, जो बहुत से सुनने वालों गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस इंतजार कर रहे हैं। अभी अभी सुबह के वक्त एक सुनने वालों उतार गया और कहा कि आज गर्मा गर्म कॉफी चाय नहीं होगा लेकिन ठंडा ठंडा

प्रोग्राम की ओर। मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, गर्मी सा मौसम, लेकिन फिर भी ये तो एक परंपरा हो गया है कि आपको हम हमेशा की तरह आज भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ बस स्वागत करेंगे। चले पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का पहला गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। जीवल्ती फिल्म का नाम

आवाज में किशोर कुमार की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई। स्टूडियो की ओर काफी डर काफी सुन वालों डर कर रहे हैं और हमारा रेडियो SBS का ऐप जो है इस पर इतने ढेर सा सुन वालों होते हैं जो ऐप कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं। शुक्रिया धन्यवाद आप सभी को एक शुभ दिन शुभ वीकेंड। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना, देश विदेश से भी ऐप अंदर आते रहते हैं रेडियो SBS का ऐप पर, सूरीनाम देश से, इंडिया, भारत देश, मॉरिशियस से भी, NO का दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सभी को जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से, हॉलैंड देश के बीच से ये आवाज निकलते हैं और वो भी 40 साल से ज्यादा। और इस वक्त पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। और जो लोग देश विदेश में प्रोग्राम को सुनते हैं लोग को भी खबर किया जा रहा है कि इस वक्त हॉलैंड देश के अंदर में मौसम इतना खूबसूरत सुहाना मौसम है, जबकि यहाँ 9:13 व्यतीत हो चुका है, तो धूप ही धूप का मौसम। आज का टेम्परेचर तकरीबन 29-30 डिग्री होने वाले हैं, कहीं कहीं उससे ज्यादा होंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे ये मौसम जो है ऐस का मौसम, साफ ऐस का मौसम है, लेकर मीठा मीठा साफ ऐस। काफी सुनने वालों हमारा रेडियो SBS का ऐप पर भी कहा है, मिस्टर SBS, इट इज एक वीर फॉर एन लेकर मीठा मीठा साफ ऐस, दैट इज वार। चलिए प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं, किशोर कुमार प्रोग्राम में।

क्या नजारे क्या सितारे, गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। सुन वालों आपको खबर किया जा रहा है मुस्कुराता दुकान जो डेनहाग शहर के अंदर में है, मुस्कुराता फैशन दुकान जो डेनहाग शहर के अंदर में है, ये खबर कर रहे हैं। इस दुकान का मालिक और मालकिन सतीश और हरप्रीत ये खबर कर रहे हैं कि पिंगस्टर वीकेंड में ईस्ट पिंगस्टर डग और ट्वेड पिंगस्टर डग दुकान खुला रहेगा। आपको मालूम है कि मुस्कुराता दुकान जो है डेनहाग शहर के अंदर में हॉलैंड देश का सबसे बड़ा दुकान है, जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े गहने हर एक सामान जाकर आप खरीद सकते हैं। 304 काउंटर मीटर बड़ा दुकान ये है, जहां पर हर एक सामान आपको दिया जा रहा है, मूर्ति से लेकर के आरमबांत शाल हर एक सामान यहां पर आपको दिया जा रहा है सस्ती दामों में। मुस्कुराता दुकान जो है कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 डेनहाग शहर के अंदर में ये खबर कर रहे हैं। ईस्ट पिंगस्टर डग सोंदग 24 मई दिन में 1 बजे से लेकर के और 5 बजे तक दुकान खुला रहेगा, और ट्वेड पिंगस्टर डग का दिन मंडग 25 मई दिन में 12 बजे से लेकर के और शाम में 5:30 बजे तक दुकान खुला रहेगा, तो 6:30। और खबर किया है कि इस पिंगस्टर वीकेंड में आन बीरिंग अक्सी रखा गया है तमाम सामान पर, और जब भी आप आने वाले दिनों कहीं कोई भी पार्टी में जाने वाले हैं, कोई नौटा में जाने वाले हैं या कोई भी पार्टी में आप जाने वाले हैं, तो हर एक की तरह आप भी मुस्कुराता दुकान का कपड़े पहनना चाहेंगे, इसलिए कि यहाँ पर नए नए मॉडल हर सप्ताह अंदर आते रहते हैं। मैंने इन लोगों का मखसैन देखा है, यकीन मानिए सुनो वालों, इतना ढेर सा सामान इन लोगों के पास है, तो इसलिए भी हॉलैंड देश का सबसे बड़ा दुकान होता है, जहां पर इंडिया भारत देश का कपड़े गहने और हर एक सामान जाकर आप खरीद सकते हैं। एक बार आप जरूर जाकर देखिए और कहिए कि रेडियो SBS आपको भेजा है, या तो आपने रिक्लाम सुना है रेडियो SBS पर, तो आपको एक्स्ट्रा कोर्टिंग दिया जाएगी। मुस्कुराता दुकान डेनहाग शहर के अंदर में कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर सोंदग ईस्ट पिंगस्टर डग ओपन फनाफ 1 स्मिदग्स तो 5 स्मिदग्स एन मंडग 25 मई ट्वेड पिंगस्टर डग खुला रहेगा दिन में 12 बजे से लेकर के शाम में 5:30 बजे तक। मुस्कुराता द बेस्ट इंडियन फैशन दुकान जो है। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम को जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आशा भोसले एंड राहुल देव बर्मन हृदय बर्मन जो सिले फिल्म का नाम। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ।

दत्ता जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई जंगली फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। सुन बलो आज शनिवार का दिन है, 23 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और कल रविवार है, ईस्ट पिंगस्टर डे का दिन, सोमवार 24 मई और कल रोटरडम आहोई में जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। रोटरडम आहोई में जुबिन नौटियाल द रॉक सिंगर, जुबिन नौटियाल का कॉन्सर्ट पेश होने वाले हैं। बहुत से लोग जाकर कॉन्सर्ट को देखेंगे। टिकट आप खरीदना चाहेंगे तो i-tickets.com वेबसाइट पर आप जाकर अपना टिकट को खरीद सकते हैं। जुबिन नौटियाल का लाइव कॉन्सर्ट जो मोर्गन जोंदा 24 मई रोटरडम आहोई में बस पेश होने वाले हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको खबर किया i-tickets.com उसी वेबसाइट पर जाकर अपना टिकट को आप जरूर और जरूर आप खरीदिए। चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुन वालो स्टूडियो का टेलीफोन नंबर और रेडियो SBS का ऐप नंबर 030-262-6611। रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए भी आप हमेशा रेडियो SBS का ऐप पर ऐप भी कर सकते हैं। अपना मोबाइल टेलीफोन, अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए रेडियो SBS का वेबसाइट पर और उसी वेबसाइट के जरिए आप ऐप भी कर सकते हैं। तो चलिए प्रोग्राम में मोहम्मद रफी की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। दरहाग शहर से नौशाद तार किया है प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और खबर किया है हेडवेयर इन दरहाग इस हस्ते का मूवी। खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम।

रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी सुनने वालों प्रोग्राम को सुनते हैं। एक गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे और गाना खास तौर पर मॉरिशियस का रहने वाला दुष्यंत झिंगरी ने मांग किया है आज के प्रोग्राम में, पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम में ये गाना सुनना चाहते हैं। नमक हलाल फिल्म का नाम, उसी फिल्म का ये गाना आप सुनते ही रहना। सॉन्ग बाय किशोर कुमार।

Doe gauw stoppen. रोटरडाम शहर की ये रहने वाली सबीना, सबीना खास गाना जो प्रोग्राम में मांग किया है लता जी की आवाज में, एक फिल्म बहारों के सपने।

फिल्म का नाम बहारों के सपने। लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग करने वाली थी रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना की मांगी हुई गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सबीना शुभ दिन पेश किया जा रहा है अनहेल मूवी पिंगस्टर वीकेंड और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। सुन वालों पिंगस्टर वीकेंड है, लंबी वीकेंड है, आने वाली सोमवार भी छुट्टी का दिन है। तरह तरह के फेस्टिवल बरादरी और डांस पार्टीज ऑर्गेनाइज किया गया है हॉलैंड देश के अंदर में। उत्तराखंड शहर के अंदर में कल आप खूब डांस कर सकते हैं साल अर्जुन में जाकर खूब डांस कर सकते हैं। यहां पर रहेंगे म्यूजिक ग्रुप जो यहां पर रहेंगे और वो है रियल सेलेक्शन मेट ऑन द लाइडिंग फॉर्म पेड्रो खेडू। आप तो जानते हैं रियल सेलेक्शंस वही गाना को गाए हैं साखन साखन। तो कल साल अर्जुन में रहेगा औसाद में रहेगा लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद अडेस समारोह लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद। एंट्री 4:09 सावंस €5 और 9 बजे रात्रि के बाद टिकट और महंगा रहेगा। इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है रेडियो SBS का फेसबुक पर। रेडियो SBS का फेसबुक पर आपको सभी इंफॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है। तो कल खूब डांस कीजिए रात्रि में 8 बजे से साल अर्जुन में डूफन हाउस डाइक नंबर 6 जहां पर म्यूजिक ग्रुप रहेंगे रियल सेलेक्शंस ऑन द लाइडिंग फॉर्म पेड्रो खेडू और लाइव फ्रॉम त्रिनिदाद अडेस समारोह। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS के पास भी आप तार कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 030-265-65-60। हमारे पास टिकट भी आप रिजर्वेयर कर सकते हैं। इसलिए कि आपको खबर किया जा रहा है फॉल इज फॉल मतलब होते हैं साल भर जाएंगे तो दरवाजा जो है बंद किया जाएगी। तो जरूर अपना टिकट आप रिजर्वेयर भी कर सकते हैं 4:09। आप आएंगे टिकट का दाम €5 9:00 के बाद और महंगा रहेगा। दमाईती मुकेश की आवाज में गाना पेश होगा और अम्स्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम पूरब और पश्चिम।

रेडियो SBS के जरिए पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत पेश की गई दमाइटी मुकेश की आवाज में गाना भी आपने सुना। आम्स्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र का खास मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं, ऐप भी आप कर सकते हैं। कोई भी रिएक्शन आप देना चाहेंगे ऐप द्वारा भी हमेशा आप दे सकते हैं। गाना जो अगली बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगी आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में किशोर कुमार की आवाज में, और हम देखते हैं कि अलमीर शहर का रहने वाला कैलाश जो हमारा प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं और ये खूबसूरत गाना किशोर कुमार की आवाज में बस मांग किया है।

जाओ कहां, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अलमीरा शहर का रहने वाला कैलाश की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई अलमीरा शहर के अंदर में हमेशा कैलाश रेडियो SBS का प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, स्टूडियो की ओर भी तार कर रहे हैं। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। 8:04 12:00 स्टूडियो टाइट हो चुका है। सुनने वालों आपको खबर किया जा रहा है कि इस साल मिलन जो है साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में होने वाले है 21, 22 और 23 तारीख अगस्तस, यानी कि 21, 22 और 23 अगस्तस मिलन होगा साइड पार्क डेनहाग शहर के अंदर में। फॉर क्राम फरहूर और टिकट के लिए वेबसाइट पर आप जाइए milansummerfestival.nl milansummerfestival.nl। डेनहाग शहर के अंदर में कमला भी हमारा प्रोग्राम हमेशा सुनते हैं और वो भी सालों से। और कमला आज की प्रोग्राम में तार किया है और एक खास गाना मांग किया है। कमला ये गाना काफी पसंद करते हैं और खास तौर पर आज के दिन किसी के याद में ये गाना भी पेश कर रहे हैं। तो चले लता जी की आवाज में ये गाना को सुनते हैं जो डेनहाग शहर की रहने वाली कमला ने मांग किया है।

काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई और देनहाग शहर की रहने वाली कमला की मांगी हुई गाना लता जी की आवाज में बस पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में।

ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और सुरिनाम पारामारिबो से हेलन, ये खास गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया जो रेडियो SBS के जरिए पेश की गई है। अजरों बीठे की अपने गाना अपने सुना, मांगी हुई गाना अपने सुना और काफी पसंद किया है। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का खास प्रोग्राम जो है इंटरनेट के सहारे जरूर और जरूर सुरिनाम देश में सुनते ही रहना। गाना की ओर हम आपको ले चलेंगे आज के प्रोग्राम में। सुनने वालों विस्तार कर रहे हैं, ऐप भी कर रहे हैं अपना अपना गाना मांग करने के लिए। एक गाना जो प्रोग्राम में अभी बार पेश होगा फिल्म प्रेम गीत फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है और गाना को मांग करने वाली है रोटरडम शहर की रहने वाली शीला। शीला ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है और वो भी जगदीत सिंह की आवाज में। फिल्म प्रेम गीत

प्रेम गीत फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुन वालों की सेवा में। रोटरडम शहर की रहने वाली शीला, शीला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था प्रेम गीत। 1981 का खास फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई। आशा रहा उम्मीद है कि गाना आपने सुना और काफी पसंद किया है। सुन वालों आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है। टेम्परेचर आज का कहीं कहीं 30 डिग्री दर्द खराद या तो दर्द खराद से ज्यादा हो सकता है। गर्मी सा मौसम होगा लेकिन हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी सी बादल छाया हुआ मौसम रहेगा, लेकिन फिर भी पूरा मौसम और गर्मी सा मौसम होने वाले है। मुस्कुराता दुकान देनहाग शहर से ये खबर कर रहे हैं कि एर्स्ट पिंगस्टर दाग और ट्वेड पिंगस्टर दाग दुकान खुला रहेगा। मतलब होते हैं कल जबकि एर्स्ट पिंगस्टर दाग का दिन है तो दुकान 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक खुला रहेगा और सोमवार ट्वेड पिंगस्टर दाग दिन में 12 बजे से लेकर के शाम में 5:30 बजे तक। और आपको खबर दिया जा रहा है ईस्ट और ट्वेड पिंगस्टर दाग का दिन जबरदस्त आक्सी यहां पर रखा गया है हर एक सामान पर। कार्ल रोस्ट्रात नंबर 4 पर देनहाग शहर के अंदर में है मुस्कुराता फैशन दुकान। ऑल इंडिया के अंदर में द बेस्ट इंडियन फैशन दुकान जो होते हैं। अब की बार लता जी की आवाज में फिल्म दुलारी का गीत पेश किया जा रहा है और रोटरडम शहर का रहने वाला राज, राज का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्म दुलारी का गीत

0: Rotterdam, शहर का रहने वाला राज का मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। पुरानी फिल्म दुलारी लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शनिवार का दिन है 23 तारीख मई का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शेरुट्रक से रेडियो वेस्ट में। इसका ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, बहुत से सुनने वालों है जो प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं इस खूबसूरत सुहाना मौसम में। तो चले माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं, मिलन फिल्म का गीत पेश होगा। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर हमारा प्रोग्राम भी सुनते हैं और वो भी सुबह के वक्त गार्डन में टाइम में बैठ कर रेडियो हाई वॉल्यूम पर किया है और गर्मा गर्म कॉफी लेकर के इस वक्त प्रोग्राम सुनते हैं। और एक खास गाना बस सुनना चाहते हैं माइटी मुकेश की आवाज में और फिल्म का नाम मिलन।
1: मुबारक हो सबको समाये
0: उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगी हुई गाना।

मिलन का गीत पेश की गई द माइटी मुकेश की आवाज में। गाना भी आपने सुना। उत्तराखंड शहर का रहने वाला श्रीमान किशोर का मांगे हुए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों रेडियो SBS का प्रोग्राम हॉलैंड देश के बीच में दूर दूर शहरों तक दया बे प्लस रेडियो द्वारा भी सुनाई देता है। आपकी मोटरकार में, आपकी घरों में और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी दया बे प्लस रेडियो के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं और वहां पर भी बहुत से सुनने वालों बस हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं। इसी तरह से रईसवैग शहर में माला भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और वो भी दया बे प्लस रेडियो के जरिए। और एक खास गाना मांग किया है आज की प्रोग्राम में, फिल्म का नाम मासूम। आज की प्रोग्राम में आखिरी पुरानी फिल्म का गीत जो पेश किया जा रहा है लता जी की आवाज में। तो चले रईसवैग शहर की रहने वाली माला की मांगी हुई गाना बस पेश किया जा रहा है हमारा रेडियो SBS का ऐप पर। हमेशा अपना रिएक्शंस देते रहते हैं और ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया है।

0: लता जी की आवाज में गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आज की पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना और आखिरी सुनने वालों की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई राइसवेक शहर की रहने वाली खासतौर पर माला की मांगी हुई गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। कल रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे खबरें की ओर, खबरें के बाद हमारा आगामी प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, ठीक 12 बजे से लोकल टाइम का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जाएगी और हमारा प्रोग्राम तकरीबन 2 बजे तक आप सभी वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी।
1: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
2: Stichting Jai Hind Utrecht presents Lekker Dansen Nachi Nachi met muziekformatie Real Selections, bekend van Zagen Zagen, onder leiding van Peter.

गाना जो पेश की गए अजय और श्रेया जी की आवाज में, ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अगली बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर।

है। बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना सोनू निगम एंड ऋषा शर्मा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

पेश किया जा रहा है और लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। एक गाना आप सुनेंगे खास तौर पर उमर की आवाज में, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। उमर की आवाज में ये गाना।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। आज का लोकल टाइम का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते हैं। चले अगला गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, तो फेमस का संगीत पर गाना को आप सुनते ही रहना।

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार लोकल टाइम का प्रोग्राम में गाना पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक लाइव रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना होगा जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में संजय की आवाज में पेश किया जा रहा है। फिल्म रास्ते का पत्थर, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग संजय की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए संजय की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं विम डमरी की ओर। गाना जो आपकी बार पेश किया जा रहा है, मुझे इश्क है तुझी से। रेडियो SBS की जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

मुझे इश्क है तुझे से मेरी जान जिंदगानी है। रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम में पेश की गई है। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड की जरिए कंप्यूटर की जरिए भी आप सुन सकते हैं रेडियो SBS.NL वेबसाइट की जरिए और सभी इंटरनेट रेडियो की जरिए दुनिया की कोने कोने में ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं रेडियो SBS का। मरहूम नदीम खान की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है बहुत दूर चले जाना है।

रेडियो SBS के जरिए मरहूम नदीम खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। उमर और खास तौर पर बाबू मैन की आवाज में गाना बस पेश किया जा रहा है। एक हॉटेस्ट गाना चटनी गाना।

आप सभी सुनने वालों की सेवा में आज की इस लोकल टाइम का प्रोग्राम में चटनी गाना बस पीछ के गए चले एक कासे को मेडली की ओर हम आपको ले चलते हैं आपकी बार। हाँ, प्रोग्राम में कासे को मेडली पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। Deel 30, 2, 62.

आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए कसे को मैथिली आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन

अहम रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। आसरा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में बाबला एंड कंचन की

और कंचन खासतौर पर बाबला का संगीत पर और कंचन की आवाज में ये गाना पेश की गई है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहरी तरफ से, ये प्रोग्राम बिल्कुल लाइव आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। हॉलैंडीज का सबसे खूबसूरत शहर से फनाइटेड मोस्ट स्टार्ट फन नीदरलैंड यूट्रेक्ट शहर से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और होगा अब की बार फिर से उमर साथ में मार्सेल फन ब्यूरन। चलिए प्रोग्राम में ये गाना मिलकर सुनते हैं। Marcel van Buren en Omar programmeren.

टाइम का प्रोग्राम में जो पेश की गए हैं हमारी बहुत सी सुनने वालों बस प्रोग्राम इस वक्त सुनते हैं। हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656560। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

इंस्ट्रक्शंस देते हैं और लोकल टाइम का प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक और चटनी सॉन्ग आज की इस प्रोग्राम में।

रेडियो SBS के जरिए रोजाना की आवाज में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो भी थे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सुनवालो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अच्छी आवाज में अच्छी साउंड में आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में विनेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है सुना।

गाना जो पेश की गई विनेश की आवाज में सोना सोना लागे रेडियो SBS की सरिये संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है शहर यूट्रेक्ट से, हॉलैंड देश का सबसे खूबसूरत शहर से यूट्रेक्ट शहर से फनाउटेड मोस्ट स्टार्ट फॉर नीदरलैंड शहर यूट्रेक्ट से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में बॉयकर

0: लोकल टाइम का प्रोग्राम रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना जहाँ जहाँ पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं।
1: Je luistert naar Mr. SBS op Radio SBS FM.

आप सुन रहे हैं नीलम के बाद चले मिस्टर ऑल राइट की ओर गाना जो पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है पार्वो सहरिया मिस्टर ऑल राइट।

में गाना बस्तरों काम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS और आज का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर।

SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। सत्यम, अमरीश, नीलम और शेरोन की आवाज में ये गाना पेश की गई। चलिए प्रोग्राम में

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार अब आपको ले चलते हैं आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में। और इसी गाना के साथ मैं आप सभी सुनने वालों से इजाजत और आज्ञा चाहूंगा। आसरा उम्मीद है कि हमारा आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम आपने सुना और बेहद पसंद किया है। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से फिर मिलूंगा। तो इसी गाना के साथ इजाजत और आज्ञा दीजिए। Have a nice weekend. शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही

तू थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया। इस किस्म तो श्रेया घोषाल एंड फरहान सईद दिल लीजिए क्वाम द फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड। गाँव द फेदर में कितनी बातें याद आती है द फिल्म लक्ष्य।

ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनोरिटा, मगर फिर भी ना जाने क्यों

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

हरी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

तुझमें क्या है दीवाने, खसौंदर किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर कम आउट द फिल्म बड़े दिल वाले। हाउ द फेदर मेट आउट द फिल्म मलंग। हमरा इज इट लीचे।

न्यूज़ में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। इस आयुध फिल्म पर रिंदा खसंगदोर आशा भोसले एंड सुरेश वाडकर खसंगदोर हेमंत कुमार कॉम दान आयुध फिल्म खामोशी फिया रेडियो SBS तुम पुकार लो।

0: मोहब्बत होना जाए is gezongen door Alka Yachnik en Kumar Sanu. En gezongen door Amit Kumar komt het volgende liedje in het programma Geetum Kelleher uit de film Raju Chacha.
1: Please, मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक चांस दो. हम दोनों के पास गुजरा हुआ कल नहीं है. कहीं ऐसा ना हो कि तुम मौका ना दो और हमारा आने वाला कल भी हमसे छिन जाए.
2: तुमने जो कुछ भी किया शेखर, उसके बाद खुद पे से भरोसा उठ गया. समझ में नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ. प्लीज शेखर, लेट मी गो.

सैलरू सैलरे, क्या बोला फिर बोला रे, इसे फिल्म शाहरुख खान एंड ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. De film Ghatkom Dag gezongen door Udit Narayan, Elke Yachnik, Sonu Nigam en Jasminder Narula. Jhumka Chandida, Chandida, Jhumka Chandida.

लीना ओ लीना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार ना मिला, अरे प्यार कर ले. इस द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इस गजंग बप्पी लहरी आयुष्मान खुराना एंड आंद्र. गाँव द फेदर मैथ अ फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस.

जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।